दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर द डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloths जो कि jute है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा, so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरी नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइन टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूँ, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी नहीं, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो, अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूँ। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूँ, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप रहे हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो

इंसान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर

0: Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी. ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.
0: वॉक टॉक रेडियो.

0: रेडियो।
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं. आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मैं भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी. मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है. लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आपने सीखे. सुनो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: वक्त रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? I've been trying your number for past 3 days. तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता ना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहूं तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती है यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती है, आपको रिजल्ट देती है, आपको पैसे देती है। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था, उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस

इंसान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहिए जिंदगी में सब कुछ मगर

हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख, वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं।

0: रेडियो।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है, कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि jute है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम, ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा, so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरी नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो आएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। आप बोलते नहीं नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जैसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ इस तरफ लेकर आई है। डेस्टिनी, इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मैंने डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। यानी कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का? नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी नहीं, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो, अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो रहे हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो

में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर

0: रेडियो।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है, कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट।

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भागदौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। देखिए, एक उम्र के बाद मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है, और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा। कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है, बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है। इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे। बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मैं भी वो। अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं, जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। दोस्त ने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, मुझे बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? I've been trying your number for past 3 days. तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो।

हाय माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है कि ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की यह हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों है, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों है, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।

एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं, उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं, उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो, जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती है, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती है, आपको रिजल्ट देती है, आपको पैसे देती है। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो, और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए, और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं, आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था, उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, उसके लिए मैं सिर्फ 5% एफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक

सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर

हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख वॉक टॉक रेडियो के साथ।
1: दोस्तों जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं खिलाड़ी नहीं।

0: Talk Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर द डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. this is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे रिकॉग्नाइज करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज करें? शायद वो टेस्ट्स हैं जो प्लांट किए गए हैं भगवान के द्वारा, so that हम ग्रो करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take

सफल नहीं होगे। आप बोलते नहीं नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ इस तरफ लेकर आई है। डेस्टिनी, इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूँ, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का? नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी नहीं, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले, वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो गए, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: भेजे के तार गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भागदौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है, बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों 1000 किलोमीटर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे।
0: वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर.

एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे. वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राई टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नायलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं. हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए. हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारे

परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ, परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम. मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट. और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है. बट देन यू नो, रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉक टॉक रेडियो.

कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. द पीपल हु से दैट यू कैन नॉट डू इट are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

0: Radio.
1: दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, हम मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्तु, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारा हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: मुझे के तार हिल गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अहमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

Radio. Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं. हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.

0: रेडियो।
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

देखिए, मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मैं भी वो. अब जरा अपनी और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन

दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ चार कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे दो कदम चार कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सुंदरो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: सिस्टम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

Radio. हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: Walk Talk Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
0: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नाइलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा। देन वी ट्राइड टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स, हमने बैम्बू एंड लकड़ी से खुद स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भोकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली, कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम, वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया, और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का। मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: मुझे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अहमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: Walk Talk Radio.

0: रेडियो।
1: हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ में आप जहाँ भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

कि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है। इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है। या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मैं भी वो। अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं, जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। दोस्त ने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, तुम्हें बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता ना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

रेडियो। हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना। वॉक टॉक रेडियो।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

रेडियो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अहमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। Radio.

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. this is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it.
1: Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हमने सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे रिकॉग्नाइज करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज करें? शायद वो टेस्ट्स हैं जो प्लांट किए गए हैं भगवान के द्वारा, सो दैट हम ग्रो करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. And don't ever listen to the naysayers. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, हम मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो गए, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: Walk Talk Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भागदौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाएं और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.
0: वॉक टॉक रेडियो.

Walk Talk Radio. हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम. सपने बड़े देखना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है. तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम.

क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो. अब जरा अपनी और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मुझे बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है. हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता ना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है। खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले। मेरे को हंसी आती है सोचकर, उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपन्ड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

Walk Talk Radio. हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना। Walk Talk Radio.

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनालिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart, and that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams, but क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो प्लांट किए गए हैं भगवान के द्वारा, सो दैट हम ग्रो करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. And don't ever listen to the naysayers. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, हम मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का? नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारा हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम, वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो गए, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: मुझे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डर डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अहमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

Radio. Hello, my name is Lucky Mehta और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. Success और satisfaction में क्या important है? मुझे लगता है कि satisfaction ज़्यादा important है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, almost जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता है. लाइफ में आप जहाँ भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीज़ें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी. ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे. वॉक टॉक रेडियो.

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

चाहिए, क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. Because सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. ये है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, में भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हों, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे

वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ चार कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट है इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है। ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे दो कदम चार कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? I've been trying your number for past 3 days. तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, but we don't have any more time to waste, okay? Please complete this as soon as possible.

हाय माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो, जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

Radio. हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना। Walk Talk Radio.

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के साथ।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नायलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं. हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राइड टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसीलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का? नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है? नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया, और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का। मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो, खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: Walk Talk Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं. हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.
0: वॉक टॉक रेडियो.

मेहनत लगती है, ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है। इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है। या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो। अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं, जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, तुम्हें बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है, और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, प्लीज कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, ना जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% एफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

रेडियो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे. वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloth जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. Then we try to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. This is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it. Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम, ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

0: Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart, and that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा, so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.
1: Walk Talk Radio.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, हम मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा।

0: मुझे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर।

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहाँ भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.
0: वॉक टॉक रेडियो.

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

देखिए, मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, में भी वो. अब जरा अपनी और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप हैं और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सुनो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे

हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे, वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता ना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश। एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाए तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था, उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, उसके लिए मैं सिर्फ 5% एफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नाइलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं. हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हमने सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे, तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं, मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी नहीं, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: मुझे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहाँ भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं. हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली. कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है. उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

देखिए, मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है.

से आपसे दो कदम चार कदम आगे जाके खड़ा हो गया, आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को, लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा, आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज़ या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी आज से लगभग 20 साल पहले। मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: Spark Talk Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंट।

इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. this is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it. Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हमने सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम, ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा, so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे, तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं, मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारा हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया, और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का। मेहनत मैंने की तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

शहीद जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: मुझे गिरफ्तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं।

देखिए, मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. ये है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. दोस्त ने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मुझे बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है. लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने